तर पहले 68 तीर्थ जन अवतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदरते बल संसार तिने हो लकार से ते देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुपी कर जाहे प्रभा नायक से करे बास चेना दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवान एको कर

ना दरक चिपक सारी जो आया सोचल सी सब कोई आई वारी है जिसकी जी प्राण है को साहेब मन विसारी है अपन हते अपना।

0: नाले कर्म ना करे कनेरियां खसमा पाए सा आप को आए सेवा करे ता किस पाए मान ना जिसन लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
1: जो जी हुए सो गवे मौका कयाबा बीजे बिक मंगे अमृत वे कोई उन्हें आओ महला दूजा
2: नाले आने दोस्ती कदे ना विरास जे आ जाने ते होर ते वे खुपन मिल जास वस्तुवान रसवान जो जो है पास साहिब सिद्धि को न चले कई बड़े अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होए नानक सिफत वास।

0: जगमग तेज पूर्ण प्रताप अमृत में जय जपत जाप सातो आकाश सातो पताल मित्रु अदृष्ट जय कर्म जार उस्तत संपूर्णं
1: स्लोक महला पहला पे पाने साजना पे पूर्ण दे एक निरत समय एक चलरन चढ़ा एक निहाली पैसन एक पर

बढ़िया यार दास है मारी वाहिगुरु जियो में सब तेरा जियो में सब तेरा सचिया पाए दिशा जियो में सब तेरा कहुना नक सब।

दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज वाला साहेब बंगला साहेब सतो टंडिया साहेबा दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बलारे।

चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वयं वसवं सर्वदा सत्युक्ते दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अंगं भूते देखते गोपतम सुपेद्रम ज्ञाप्त नानक गुरु गोविंद सिंह से अकाल पुरुष सहाय दरबार में तेरो दरबार शक्ति से निरंकार लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबार।

एक श्री छंद अजय अलह भय भय भू अजू अनाश कास अगंज अभंज अलख अभख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम काम गाह डाह अनाथे प्रमाथे अजू।

थल में पल ही पल में सब थप थपाएंगे, पुण्य प्रतापन बार जाए धुन पापन के बहु पुंज खपाएंगे। साथ समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब लोग छपाएंगे, मानो इंद्र गजेंद्र राजिम जौंत लोग को राज करेंगे, कोट स्नान के जादिक दाने स्वयंवर साज परेंगे, ब्रह्म सर विचंद अति पदंत फसे जम फांस परेंगे, जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर न देह धरेंगे। कहा भयो जो दोलोचन मूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो, नाथ प्रिय लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो, बास की ओर बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैठ बितायो, साचे कहो।

महन पूज धर्यो सेर काहू लालिंग गारे लटकायो। काहू लख्यो हरावाची दिशा में है काहू पछाह को शीश निवायो। को उपतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन थायो। पूर क्रिया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो। तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दचार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछेद तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान दचार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापी हो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुखचार वकत बेअंत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचो विचार विचार अनंत रूपा खंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मंड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिन नगेंद्र कई माच्छ काच्छ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुखचार कई रुद्र क्षुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई भेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कौ कतत हिसो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कौ योग भेद उदास कौ निवली कर्म करंत कौ पवन हार दुरंत कहूँ तीरा दान अपार कहूँ जाग करम उदार कहूँ अगन होत्र अनूप कह न्याय राज विभूत कहूँ शास्त्र सिमरत रीत कहूँ वेद सिंह विपरीत कई देह देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूँ कर जल में जाप कहूँ सा तन पर ताप कहूँ बाल बने करंत कहूँ ताप तनय सहंत कहूँ ग्रह धर्म अपार कहूँ राज रीत उदार कहूँ रोग रहत अभरम कहूँ कर्म करत अकर्म कहूँ शेख ब्रह्म स्वरूप कहूँ नीत राज अनूप कहूँ रोग शोक विहीन कहूँ एक भगत अधीन कहूँ रंग राजकुमार कहूँ वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई शेख नाम उचरंत बैराग कहूँ संन्यास कहूँ फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नह फल मान बिन एक नाम आधार सब कर्म भरम विचार। तो प्रसाद लगुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि चिते हरि नभे हरि इहा हरि वहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभे करि अधोख हरि अद्वैख हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुई थलस्तुई नदीस्तुई नदस्तुई वृक्षस्तुई पतस्तुई छितस्तुई ऊर्धस्तुई भजस्वंग भजस्वंग रटस्वंग ठटस्वंग जिमितुई जमातुई मकीतुई मकातुई अभूतुई अभय।

खूक माले हारी गाज गाते हाबी भूदारी की दुआ मसान बाज करो ई करते हैं। घुगु मडवासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदी मोन सादे ही मरत है। बिंद के सदैया दा हीज की पटैया दे बंदरा सदी पाए नंगे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत बन चारी छे छौना सभ्य दूजा धारी पौन के हारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रग भैया मानियत है। नव के उड़ैया ताए पंछी की बडैया देद बगला बिडाल ब्रग ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी ना है। ऐसे ना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताए भूचरी के जैया कह नव के उड़ैया सो चिरैया कह बखानिया। फल के भचैता है बांदरी के जैया कह आदेश फिर जाते तो भूत कह पछानिया। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आखे भचैया सो चकोर सम्मानिया। सूरज सिवैता कौल की बिटाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि कह पहचानिया। नारायण कच्छ मच्छ तेंदुआ कह सब कौल नाव कौल जय ताल में रहते हैं। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन जारी रिखी के नाम के महंत लही आते हैं। माधव भवर औ अटेरु को कन्हैया नाम कांस को बतैया जाम दूध कही आते हैं। मूड रूड पीटत ना गूढ़ता को भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रही आते हैं। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल भैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहते हैं। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्या दे पैसहते हैं। निवलिकरम जल होम पावक पवन होम अधोक मो एक पाए ठंडे ना बहते हैं। मानो फनिन देव दानो ना पावे भेद भेद औकतेव नेत नेत का कहते हैं। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे वही करत है। चंद्रमा ते शीतल ना सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से ना वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या ना अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराए फिरत है। एक शिव भय एक गाय एक फेर भय रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विषण के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समोहन के होए होए बिताए है। मोन्दी मदार के ते असनी कुमार के ते अंसावतार के ते काल बद भय है। पीर और पिकाम्बर के ते गनेना परत ते भूमि ते होके फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरा दे बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से मही पाओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूमंद भूम में मिलत है। सेजते करे अनेक तोप जी कपट भेद पोसी अनेकता निभावत है शीश का। कहा भयो मल जो पे कांड दे अनेक दंड सोतन डडा अष्टांग तीस का। कहा भयो रोगी जपे डारे रहे उर्दमोग मानते ना मोड़ने हरायो आदिश का। कामना दीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जग दीश का। शीश पलट कर जाके कान में खजूरा दसे मूड छट कर मित्र पुत्रों के शोक सा। आग को चरया फल फूल को भजे सदा भन को भ्रमया और दूसरो ना भोग सा। कहा भयो भेड़ जो घसा शीर वृक्षण सो माटी को भसैया बोल पूज लीजा जोग सा। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सा। नाचोई करत मोर दादर करत सोर सदा घन घोर घन करे वही करत है। एक पाए ठाडे सदा बन में राज वृक्ष फूक फूक पाँव भूत रावक धरत है। पाहना एक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महदान में न हुजलिन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो गया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेद बन कर दिखा भई। कहूँ पौन हरि कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गा भई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे वारी कहूँ दंड धारी होके लोगन भ्रमावई। कामना अधीन परे नाचत नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे भ्रम लोग पावई। पांच बार गीदर पुकार परे शीत काल कुंचर गदहान एकदा पुकार ही। कहा भयो जो पे कलवत्र लियो कांसी भी चीर चीर चोरठा कुठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग डार डार डार फांस ठग मार मार डार ही।
डूबे नरक धार मोड़ ज्ञान के बिना विचार भावना भीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पाइये तापना तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए तो जाइए पता जाप के किए तो जो पे पाइयत अजाप देव कूदना सदी तू ही उचरत है नव के उड़े ते जो पे नारायण पाइयत अनस अनल आकाश पंछी डोल बो करते है आग में जरते गत रांड की परत कर पताल के वासी की भुजंगना तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनमान बो हिंदू तुरक को राव जी इमाम सभी मानस की जा सब के पहचान बो करता करीम सोई राजक रहीम होई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही की सेव सब ही को गुरु देव एक ही स्वरूप सब के जो जान बो देहोरा वसी सोई पूजा होनी बाजो ईमान सब एक बयान एक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक दे के बान खाक बाद आपको रलाव है अल्लाह भेग सोई पुराना कुरानो एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे आगते कनु का गोड आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे जैसे एक नत्ते तरंग को डूब जाते पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते ऊपर सब ताही में समाहेंगे केते कच्छ माछ केते उन को करत भच्छ केते अच्छ वच्छ होए सपज ओढ़ जाएंगे केते नबीज आज पज को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यज हो बचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे तेज युवा तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते ऊपर सब ताही में समाहेंगे कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी की भरमाए फिरत है करवा सहत केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुक्का भरत है ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जारे मरत है शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चोआ चार पूज हारे पाहने चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंदरा बजाए हरे किन्नर सब पज हारे पंडित तपंत हारे तापसी ना प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भर्मंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजूनी स्वरूपंग सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा वास्ता को फिरे कौन भेखंग कहा नाम ताको कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं न आवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भर्मंग ना जन्मंग ना जातंग आज वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछयाद अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभय आद अद्वै अविनाशी परेंग परापरम पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रताप आद अच्छय विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाते दंडे मंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना बितरे सो भूते भविके भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंकंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग भूतंग भेकंग ना सत्रंग ना वितरंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अछे आद अद्वै अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधंग ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भरमंग ना भयंग
ना रूपंग ना भूपंग ना काय ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भरमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा अनुक्तंग प्रतापे अयुक्तंग अच्छे आदित्य अथापे विभुक्तंग अच्छे आदच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना शोकंग ना साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भरमंग ना सर्वंग ना सागे ना भरमंग ना चरमंग ना कर्मंग ना बाके ना सत्रंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आज रूपे कहूं कंज के मंज के भरम फूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तांबे कहूं अक्षर के पक्षर के सिर साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चेतर रूपंग कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपंग कहूं ने गृह कहूं दे दोखंग अखदि रोग के शोक शोकंग कहूं दे विद्या कहूं दैत बानी कहूं जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी प्रसाद की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतंग कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतंग कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जल विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं वेववाणी कहूं कोप की काव कथा कहानी कहूं उदर सारंग कहूं भद्र रूपंग कहूं मधुर वाणी कहूं छद्र स्वरूपंग कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपंग कहूं चेष्टाचार्य चित्रंग स्वरूपंग कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं वैद कुरान के गीत गावे कहूं सोत से कंग कहूं ब्रह्म धर्मंग कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मंग कहूं ज्वाल स्वरूपंग जरारा देहंग कहूं ने देहंग कहूं त्याग रेहंग कहूं जोग भोगंग कहूं रोग रागंग कहूं रोग हरता कहूं भोग त्यागंग कहूं राज साजंग कहूं राज रीतंग कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतंग कहूं आरवी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देद भाग्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतंग कहूं शस्त्र धारंग कहूं ओम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतंग कहूं मलेर भाग्या कहूं वेद रीतंग कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबानी कहूं गार डुगुण कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजंग धीराजा अधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अछे आदत व विधाता न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते ता प्रसाद पादरी छंद अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूपद व्यास अनतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनभूतेर अनछेद गान करता सदी हरता सनात आसन डोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नई जन्म जा जय पुत्र भ्रात नई मित्र मान जय कर्म भरम नई धर्म ध्यान जय ने व्योधमान जय जात पार नई सत्र मित्र जय ने गेह चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम फेक जय कर्म भरम नहीं जात पात नहीं ने गे नहीं पितृ मान जय नाम साम नहीं बरग ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र सास जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आद नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो नांग अच्छा स्वरूप अखय भंग जय नेत ने उचरंत बे जय अलग रूप कथत कतेब जय अलग रूप आसन डोल जय मित तेज अक्षय तोल जय ध्यान काज मुंजन आनंद कई कलप एक साधन तुरंत तन सीत गां बरखा संत कई कलप एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधन तथा पावत न पार कई उर्ध्वा देशन प्रबंध कई उर्ध्वमत पावक झुलंत कई सिमरे शास्त्र उच्चरंत वेद कई कोप काव कथत कतेव कई अग्न होत्र कई पौन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पे पत्र भाष्य नहीं तथा देह होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत
कहूं बेदरी जग आदि कर्म कहूं अगन होत्र कहूं तीरा धर्म कई देद देद भाखा रटंत कई देद देद विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरा तीरा धर्म सो भरम कई अगन होत्र कई देव कर्म कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायत न पार कहूं राजरीत कहूं जोग धर्म कहूं सिमरे शास्त्र सो कर्म निवली आदि कर्म हस्तदान कहूं अश्वेध मको बखान कहूं करत भ्रम विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृद्ध चार कहूं कर जज गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं कर शास्त्र सिमरित

कई जपद और लटकंत जा, कई जपद यो कल्पंग प्रजंत, नहीं तदव तास पायत न अंत, कई करत कोड विद्या विचार, नहीं तदव दृष्ट देखे मुरार, बिन भगत सगर नहीं परत पान, भो करत होम अर जगदान, बिन एक नाम एक चेतलीन, फोकटो सर्व धर्मा विहीन, थोबरसा तोटक छंद, जय जंप हो जुगण जुअ जुवंग भय कंप हो मेरे पयाल भुवंग, तप ताप सर्व जलेरु थलंग, धन उचर इंद्र कुबेर बलंग, अन खेद सरुआ भेद भयंग, अन खंड अभूत छेद छियंग, अन काले अपाल दयाल सुंग, जय ठटियर मेर काज भुवंग, अन खंड अमंड प्रचंग नरंग, जय रचंग देव अदेव बरंग, सब कीनी दीन जमीन जमा, जय रचंग सरम कीन मका, जय रागना रूपना रेग रुखंग, जय तापना सपना शोक सुखंग, जय रोगना शोकना भोग भुवंग, जय खेद न भेद न छेद छयंग, जय जातना पातना मात पितंग, जय रचंग छत्री छत्र छितंग, जय राग ना रेग ना रोग भणंग, जय द्वैख ना दाग ना दो गण, जय अंडा ते ब्रह्मंड रचयो, दस चार करी नौ खंड सचयो, रस्ताम तेज अतेज की अनुभव पदा प्रचंड लियो, से सिंदर बिंद न गिंद न गंग, से जाच गंधर फणिंद भुजंग, रच देव देव न अभेव न रंग, नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग, कई कीड पतंग भुजंग नरंग, राज अंडा सेतर उद भुजंग, किए देव देव सराज पितंग, अन खंड प्रताप प्रचंड गतंग, प्रभु जातना पातना जो जुतंग, जय तातना वातना भ्रात सुतंग, जय रोगना सोगना भोग भुवंग, जय जंपा किन्नर जाज हजुवंग, नर नार नपुंसक जाय किए, गण किन्नर जाच भुजंग दिए, गज बाज रथाधिक पांच गण भूत भविक भवान तुवंग, जय अंडज सेतज रेज रजंग, रज भूमकाल ताल जलंग, रज पाव पान प्रचंड बलि बन जास की ओ फल फूल कली, वो मेरा का निवास चितंग, रज रोज का द चंद्र वृतंग, दुध चंद दिनी सह दीप दई, जय पावक पान प्रचंड मई, जय खंड अखंड प्रचंड किए, जय छत्र उपाय छपाए दिए, जय लोक चतराचार रचे, नर गंधर्व देव अदेव सचे, अन धूत अभूत छूत मतंग, अन गाद अभ्याद नाद गतंग, अन खेद अभेद अछेद नरंग, जय चा चतर चक्र फिरंग, जय राग न रंग न रेख रुखंग, जय शोक न भोग न जोग जुवंग, वो भंजन गंजन आशिरंग, जय बंद देव अदेव नरंग, गण किन्नर जज भुजंग रचे, मण माणक मोती लाल सुचे, अन भंज प्रभा अन घंज वृतंग, जय पार न पावर पूर मतंग, अन खंड सरुवा दंड प्रभा, जय जंपद वेद पुराण सभा, जय वेद कतेव आनंद कह, जय भूत अभूत न भेद लह, जय वेद पुराण कतेव जप, सुत सिंध अदो मुख ताप तप, कई कल्पन लो तब ताप करे, नहीं नह कृपा निध पान पर, जय फोकर धर्म सब तज है, एक चैत कृपा निध को जप है, तिव या भव सागर कोतर है, भव भूल न दे पुनर्धर है, एक नाम बिना नहीं कोड प्रीति, इम वेद उचार सार सुति, जो वारस के चस के रस है, ते भूलना काल फंदा फस है, तो प्रसाद नराज छंद, अगंज आद देव है, भंज भंज जानिए, भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए, अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व साथ है, अनाथ नाथ नाथ है, भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है, सदीव सिद्ध वृद्धदा, अनूप रूप स्वरूप है, अच्छे तेज वाणी है, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेक है, अधोग दाग तक है, भूत भ्रम भेक है, न तात्मात जात है, न पाच्यन भरण है, अधेक से भेक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वभर विश्व नाथ है, विषेक विश्व भरण है, जमीजमान के विक है, सदीव गर्म भ्रम है, अद्वैक अभेक अलेक न जानिए, सदीव सर्व ठौर में अभिषेक आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण अकुरान नेत नेत कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न भ्रम में बताइए, अगंज आ देव है कह सुख सिपाहिये, जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन अमकान अप्रमान तेज मानिए,
ना देह है ना गेह है ना जात है ना पात है ना मंत्र है ना मित्र है ना तात है ना मात है ना अंग है ना रंग है ना संग है ना साथ है ना दोक है ना दाक है ना द्वैक है ना देह है ना सिंह है ना स्यार है ना राव है ना रंग है ना मान है ना मौत है ना साक है ना संक है ना जच है ना गंधर्व है ना नर है ना नार है ना चोर है ना शाह को कुमार है ना ने है ना गे है ना देव को बनाओ है ना छल है ना छिद्र है ना छल को मिलाओ है ना जंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को स्वरूप है ना राग है ना रंग है ना रेक है ना रूप है ना जंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को बनाओ है ना छल है ना छिद्र है ना छाया को मिलाओ है ना राग है ना रंग है ना रूप है ना रेक है ना कर्म है ना धर्म है जन्म है अभेक है ना तात है ना मात है खाल खंड रूप है अछेद है भेद है ना रंग है ना भूप है पर है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है भंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है ना रोग है ना सोग है ना भेद है ना भंड है ना अंग है ना रंग है ना संग है ना साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है ना सीत है ना सोच है ना घ्राम है ना घाम है ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है ना देव है ना दैत है ना नर को स्वरूप है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र की विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है ना द्वैक है ना भेक है ना दुई है ना द्रोह है ना काल है ना बाल है सदयु दयाल रूप है गंज है भंज है भरम है भूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत अवेग है बलिया रूप राग रंग है ना द्वैक है ना भेक है ना काम क्रोध कर्म है ना जात है ना पात है ना जत्र चित्र चिहन वरण है व्यंत है अनंत तेज जानिए भूम बीज है सदा छे तेज मानिए ना आद है ना ब्याद है अगाध रूप लेखिया दोख है दाग है छह प्रताप देखिया ना कर्म है ना भरम है ना धर्म को प्रभाव है ना जंत्र है ना तंत्र है ना मंत्र को लाव है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र को स्वरूप है अभंग है नंग है अगंजसी विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ मोह कार है ना आद है ना ज्ञान है ना वाद को विचार है ना रंग रूप राग है ना रूप रेख रार है ना रंग राग रूप है ना रूप रेख रार है ना हाव है ना भाव है ना दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करण सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्पति विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है अगाधा देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए सदयु सर्व लोक के कृपाल ख्याल मै रहे तुरंत द्रोह देख अनंत भां सोद है तो प्रसाद रुआ मल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण भीन आदनाद अगाध प्रग सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जागो आद प्रग पार हाथ कीट बिखै बस सब ठौर में निर्धार जात पात न ता जागो मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखै रम्यो जय चक्र चिय न क्षेत्र आदेव दार मुद्र अगार नाद अनंत आद अंत न जानिया बिखा देव तुरंत देव भेव न जाने जय मरम वेद कतेब सनक अवसन केश नंदन पावि न हसेब जाज किन्नर माच मानद मुर्ग उर्ग पार नेत नेत कार ही सी सौकरो मुखचार सर्व सपत पतार के तर जाप ही जय जाप आदेव गाते अनाद मृत ताप जंत्र मंत्र न वही कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहो विराज धीराज राज प्रवीण जज गंधर देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसरंग बिखै विराजे सूद रवि व नाहे गुड़ गौर न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप राज दिवस न मध्य उर्द न भूमकास अनूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर जात्र न देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिए जय ज्योत शेष नाम सहसपन नेत पूरन होत सो सो हटे सब सुर विरोध दानो सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके मह कवि गड़द गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लख्यो न सेव कतेब देव दानो मूढ़ मानो जच न जाने जे भूत भवान भूपत आद नाद नाद अगन पाय जले थले में सर्व ठौर निवास दे गे ना ने सन्या बे नाद अजीत सर्व गंजन सर्व भजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयालद भेक चक्र चेना बरन जागो जात पात न भेख
रूप रेखना रंग जागो राग रूपना रंग सर्व लाग सर्व घाग सर्व ते अन भंग सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व को व्रत पाल दीन बंद आल स्वामी आदे पाल दीन बंद प्रवीण श्री पर सर्व को करतार बरन चे न चक्र जागो चक्र चे न कार जात पात ना गोत्र गाता रूप रेखना भरन सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम प्रमाथ दुष्ट अर्था श्रेष्ठ करता जगत में जय गाथ भूत भव भगवान प्रमाण देव अगंज आदंत ना श्रीपद परम पुरगा भंज धर्म के अन करम जय कीन तौर प्रसार देव देव गंधर्व किन्नर माच काच अपार भूम का जले थले में मानिए जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु खालक दीन दयाल मुकंद अघाट अंडन दुष्ट खंडन काल हुके काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निर्भाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमरितन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्व भरता आद्रुप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूम का जले थले में जप जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जिते जानिए सब विचार आदेव अपार श्री पर दुष्ट पुष्ट प्रहार।

जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे से रुद्र मुख चार कोट इंद्रोपेन्द्र व्यास सनत सनत कुमार गाये गाये थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आद अंतना मत जागो भूत भगवान सात द्वापर तृतीया कलयुग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाई है तह पार नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाज पच्छर पार सो थके महासुर पायो नह पार तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उतरियो मसी बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल भी तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है का श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब का मरण है कवन सुर कह नरक को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जत है कवन कवन पाप का धर्म कवन जोग को भोग है कवन कर्म अब कर्म दोहरा कहो ससम कासो कह दम को कह कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मन दोहरा कहा रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कवन रेष्ठ को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ छेद का दोहरा कहाँ नेम संयम कहाँ ज्ञान ज्ञान को रोगी सोगी कवन कहा धर्म की हान दोहरा को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार तो प्रसाद दीरक दीर्भंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्टन कंदन आदवृते चछरासुर मारण पते दुसारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छा खंडे तेर टंडे खंड टंडे लखमते जय जय हुसी मैं कासुन मर्दन रंब का प्रतन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दोष्ट निकंदन पुष्ट उडंडन रूपते चंडासुर चंडन मोंड बिहंडन धूम्र विधंसन महकमते दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उदारण उर्द अधे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन रंभ कपर्दन आदृते डावरु डबंक बबर बबंक भुजा फरंक तेज भरंग लंगुड़िया फांदे आयुध बांधे सैर में मर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके अस्थि झमके फुंक फनंग जय जय होसी मैं कासुर मर्दन रंभ कपर्दन दैत चिड़ंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड खंडन खून खिते दामनी दमनकण धुजा फरंकण फणी फुंकारण जो जिते सरदार विवरखण दुष्ट प्रकरकण पुष्ट प्रहरकण दुष्ट मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन भूम का तल उर्द अधे दामनी प्रहासन सो छव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्तासुन आचन ज्योत प्रमाचन निर्दय नराचन धर्म वृते सुरोणत अचिंती अनल विंती जो जयंती खड़क धरे जय जय होसी मय कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजान श्रेष्ठ उपारण शोध मते फणी अर फुंकारण बाग बकार शस्त्र प्रहारण साध मते साहित्य स्नान अष्ट प्रभान बोल निवान तेज अतुलंग जय जय उसी मैं कासुर मर्दन भूम काल पताल जलंग चाचर चमकारण चचुर हारण धूम दुकारण द्रव मते दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनोज मतंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरत प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होसी मय कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुमरु घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शोध सनाय अगमता एक वृते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद कुमार आद वृते सुर नर मुन बंदन दोष्ट निकंदन भृत विनाशन भृत मृते कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर बोहन सिंगारोहण पितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल काश अनले संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण तुंदे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद अथे संतता समर्पण तरक वितरकण तपत बतावन जपत जीवे जय जय होसी शत प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे
चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंत रंगन तेज सरे कर कसाक उठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके कुरूर कथे जय जय हुसी रक्ता रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसोम मथे बारज विलोचन प्रितन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहसे सुख सरनासे सुब्रे सुभासे दृष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय हुसी मय का सुरवर्धन आद अनाद गाद उर्धन घंटका विराजे रुंजुन भाजे ब्रह्म भाजे सुन सुरंग को कल सुन लाजे कल्पिक भाजे राजे मधुर दुर्जन दल दज मंथन रिझ जय जय होसी मै कासुर मदन चंड चक्रदन आदि गुरंग चाचरी प्रजोधन दोष विरोधन रोष अरोधन क्रूर बिते धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन सुध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मै कासुर मर्दन आज उगाद गाद गते खत्रियान खतंगी अभय भंगी आद नंगी अगाद गते ब्रिड लाज बिहंडन चच्छुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण प्रतिधारण दोष निवारण धोख हरे जय जय होसी मै का सुर मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सरवर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टाद बाण बोलनी बाण संत पनाहण गुड़ गते जय जय होसी मै का सुर मर्दन आद अनाद गाद वृते दुग दो प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाहे दोष प्रदाहे अर्दल गाहे धोख हरे गंजन गुमाने अतुल ब्रह्माने संत जमाने आदंते जय जय होसी मै का सुन मर्दन सात प्रदन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुन मते अष्टाय चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आदमृते डुग डुगी दमंक पाग बबंक भुजा फरंक सुध गते जय जय होसी मह का सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरा सुर मारण नरक निवारण पते धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चार नरक निवार पते उधारे मुंड मथे जय जय होसी मै का सुन मर्दन धूम्र विदुन संग आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चकर्दन दानव अर्दन बिडाल बधे सरदार बिबरकन दुर्जन धरकन अतुल अमरखन धर्म धुजे धूमराज विध्वंसन सोम निपात निसोम मथे जय जय होसी मै का सुन मर्दन आद अनिल गाद कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते पसार जब जद्दब भूतन भय अनंत कहो जथा मत त्रैण तंत करता करीम का दर कृपाल अद भय अभूतन भय दयाल दाता दुरंग दुख धोकर हज नेत ने सब वेद कहते कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड की ना सेवंत चाहे कई मूड पात्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अन छज तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंग अदभय अनास सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हर दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पार ने भेद भरम जय रंग रूप ने एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल अपार जानी न जाय जय रूप रेख बास तास कह कौन भेख कह नाम तास है कवन जाय जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंद की करद पाल उर्दंग बिरा सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनछज तेर अनभेज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेत निर्दिन उचरंत पायो न जय जय पायर पार दी नान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निर्दिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे नि संतु बार गनी मन गारे
पच्छ पशु नग नाग नरादिप सर्व समय सब को व्रत पार भोगत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम विचार दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत न हर दाहत है दुख दोखन को दल जन के पल मै दल डार खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचार रोजी ही राज लोग राज रोग रोहान की रोजी न टार कीट पतंग कुरंग भुजंगा भूत भवेक भगवान बनाए देव देव खपे अहमे ना भेव लखे भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पात स्यों केन श्री पदमा पद पाए आद अनंत अगाध अद्वेग सो भूत भविक भवान वह है अंत विहीन अनातम अदाग अदोग अछिद्र अच्छ है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया न दया कर श्रीपत सुंदर श्री पदमा पद ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है दे विहीन सने सबो तन नेह विरक्त अगह अच्छा है जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मापत ले है रोगंते अरसोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत घाव तऊ तन एक न लागन पावे राकत है अपनो कर दय कर पाप समूह न भेटन पावे और की बात कहां कह तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम अकाल पताल रसा चल जज भुजंग सब सिर न्यावे पाए सकी नी पार प्रवाह को नेत ही नेत वेद बतावे खोज सके सब ही कुजिया सुर हार परे हाथ न आवे नारद से चतरानंद से रुमनारी से सब हुमिल गायो वेद के देव ना भेद लगे सब हार परे हाथ न आयो पाए सकी नी पार मा बस से सना सनातन ध्यायो ध्यान धरो दह को मन में जह को अमितो सब जग छायो वेद पुराण कते पुरा भेद निर्पाण सब बजहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अन छेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाध अभेग अद्वेग जपियो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट की स्नान दिए वदान महाव्रत हारे देश प्रयोग कर भेष तपो धन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग

अत्र के चलैया छत्र छत्र के धरैया छत्र धारी के चलैया मां सत्रन के साल हैं दान के दिवैया मां मान के बटैया अवसान के दिवैया हैं कटैया जम जाल हैं जोत के जितैया वृत के मिटैया मां बुद्ध के दिवैया मां मान हु के मान हैं ज्ञान हु के गाता मां बुद्धता के दाता देव काल हु के काल मां काल हु के काल हैं पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय जावे गौर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जो साधे पौन साधना की तेग बादे आरब के अरबी अराधे तेरे नाम है फरागे फरंगी माने कंधारी कुरेसी जान पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मरहटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे दड़वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली की दिलवाली तेरी आज्ञा में चलते हैं रो के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पा पुंज को मलते हैं गोखा गुन गावे चीन व चीन के शीश नी आवे तिब्बती ध्याय दो देव के दलते हैं जिन्हें तो हे ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देव देव देवतान को सुरे दानवान को महेश गंग धान को अभेद कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे ना दीन साध अधीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार उदार है पार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचता है चींटी की चिंगार पहले ही सुनियत है केते नद्वार केते ब्रह्मा मुगुचार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है केते सासे रासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडे उदासी जो द्वार दहियत है केते महादीन केते व्यासे प्रवीर केते कुमेर कुमलीन केते जज कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है ना परावार पाइये ना पार पे अपार के बखानी है अद्वै अविनाशी परन पूरन प्रकाशी मां रूप होके राशि अनाशी कह के मानी है जंत्र हुना जहाँ जागी बाप हुना मायता की पूरन प्रभा की सो छटा कह न मानी है तेज हूं को तंत्र के राशि को जंत्र के मोहनी को मंत्र निजंत्र कह के जानी है तेज हूं को तरह के राशि को सारे के शुद्धता को घरे के शुद्ध की सार हैं कामना की खाने के साधना की साने व्रक्त की बाने के बुद्ध को उदार हैं सुंदर स्वरूप के भूपन को भूप के रूपों को रूप कुमत को प्रहार हैं दीनन को दाता है गनीमन को गारक हैं साधन को रचक हैं के गुणन को पहार हैं सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभूत के क्रोध को अभूत के अच्छे अविनाशी है काम को गुनिंदा के खुबी को दिहिंदा गनीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काले के सतरन के साले के मित्रन को भोगते के वृद्धता की बासी है जोग हूं को जंत्र के तेज हूं को तंत्र के मोहनी को मंत्र के पूरन प्रकाशी है रूप को निवास के बुद्ध को प्रकाश के शुद्धता को वास के बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचाया ईमान को दिवैया जम जाल को कामना कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइये ना पार पारा वार हु को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हबसी हल्ला विध्यावे पूर्वी ना पार पावे आशा ते अनास है देवन को देव मा देव हु के देव है निरंजन अभेव ना दद्वे अविनाशी है अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन कटैया जम जाल के देवन के देव माँ देव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया मुहिया माँ बाल के राजन के राजा माँ साज हूं के साजा माँ जोग हूं को जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना करे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की साधे के काल है कुचाल के शीर कैसी शीरा व छात कैसी छत्रा नेर छपा कैसी छब कालिंद्र के कुल के हंस निसी सिहारू हीरा सी हुसैन आबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के परासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगा वानी के रही झूल के चंपासी चंद्रे चंदेरी कोट चांदी सी चांदा गो गढ़ कीरती हरी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमावगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगा वानी के सोहियत है हिमासी हिमालय हाव सी हल्ला बानेर
हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदी सी चंदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार वकांसी बिलंदाबाद की रती हारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी से के दोरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है, भखरी गंधारी गोर गखरी कर देदा जारी पान के हारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरा पलाव काम रूपा कमाओ सर्व ठार में विराजे जहाँ जहाँ जाइयत है, पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र तापी नाथ कीरत हारी को न पार पाइयत है, तो प्रसाद पादड़ी छंद अद्वैनाथ आसन।

बन तन दुरंत खग मृग महान जत प्रफुल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल लहत मोर सिर ढुरै जान मर मत चार कुदरत कमाल।

दरबार में दरबारा सच खान वस्या निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा।

0: सिर साहिबा महाराजा रणजीत सिंह जी शेर है पंजाब
1: बोले
0: सिर साहिबा महाराजा रणजीत सिंह जी शेर है पंजाब
1: बोले
0: सिर साहिबा महाराजा रणजीत सिंह जी शेर है पंजाब।

पहला सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मंड सत्य तेरे लो सत्याकार सत्य तेरे करने सर्व विचार सत्य तेरा अमर सत्य दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदाखे लख करोड़ सत्य सप्तान।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रेजंत विस्माद पवन सुमद पाणी विस्माद अग्नि खेडे बिडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणे विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पक्ष विस्माद भोग विस्माद सपद समाद साला विस्माद विजोड़ विस्माद।

हम च दिता चलिया हम च खटिया हम च गया हम सच यार कुड़े रच पापन विचार हम च नरक सुरग अवतार हम च हसे हम च रोवे हम च बरी हम च धोवे हम जाति जिसी खोवे हम च मूर्ख हम सियाणा।

कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ बसनहार कुड़ सोना कुड़ रूपा कुड़ पननहार कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़ बपार कुड़ मिया कुड़ बिबी खप होए खार कुड़ कुड़ नलका।

गुण चंगियाया तत सब को नि आपको पर को नि न कोय तर तर जु तो लिए निवे सो गौरा होए।

पौड़ी छिते अंदर सबको वेख नजरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वड़ियाई आपे ही करम कराएंदा, वडोड़ावड़ मेजनी श्रेष्ठ धंधा लाएंदा, नजर उपर टीजे करे।